0: तो पत्थर बन के रहना पड़े, तो उस टाइम से पत्थर सालिग्राम के रूप में रहे। फिर दूसरा सांप था, तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी। और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी, कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए। और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए। इसलिए चार श्राप था, तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं। तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग देयर। फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास। सो दैट्स व्हाई ग्रास, द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास, द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन, एंड दैट्स व्हाई इन प्रेयर एवरीवेयर वी यूज द कुश ग्रास। एज वी मेंशन अर्लियर सेशन इज कुश ग्रास इज ऑल्सो मेडिसिनली इज थेरापेटिकली वेरी यूजफुल एंड वेरी वंडरफुल हर्ब्स। And similarly, she calls the grass bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isliye is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur kya hai ki hum jo people ko ruk, saligram ko, tulasi ko, kush grass ko, vishnu ke roop pe istemal karte hain. Ye ayurved ke hisab se, swasthya ke hisab se acha hai, aapko bimar theek kar deta hai, aur tulasi khana ma dal ke khaye aapko bath rog theek ho jata hai, tulasi ghar mein rakhe aapko chatyang nahi aata hai aakash se, aur koi bhi bismat nahi aata hai, aur bhoot prit pisach nahi aata hai. Isliye kush grass chahe jisi dharma ka insaan ho to wo rakhe to uske liye laabh hoga, tulsi bhi aise karke laabh hoga. So from that day Vishnu started to moksha, moksha ke liye aa gaye, and then he started to remain tulsi, people, saligram and kush grass. So nowadays if you have to pray Vishnu, normally you go to and worship, and it is saying Vishnu tulsi people is a indicator of Vishnu. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well, but people that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen, and without water, without food also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you supposed to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility, and that is the because of the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people tree, and you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है, जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है. दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है, जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है. दैट पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इन हवन आल्सो, व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड, पीपल वुड्स, तुलसी वुड्स, कुश ग्रास, तुलसी वुड. सो व्हेन यू डेथ आल्सो इन सिमेट्री, इफ योर बॉडी इज सिमेट्री क्रिमेट विद द वुड ऑफ द पीपल, कुश, तुलसी, इट्स एज लाइक it will be purified your body, and spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People, marne ke samay mein kya hai, ki thodi si bhi people ke ped lakdi, aur tulasi ke lakdi saath mein rakh lo, aur chita mein koi bhi, kisi ka bhi chita, पीपल का लकड़ी से, तुलसी का लकड़ी से, उसमें कुशकाश रख के उसको चिता, जो चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है. तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव. अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुछ से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन यू गो एंड इफ यू हैव द मेजरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट हैज बीन डन मेनी टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो डिड। सो इफ यू टेक दैट लेवल ऑफ ऑक्सीजन नियर क्लोज टू द पीपल ट्री और बाइजल ट्री द तुलसी के नजदीक जाके चेक करें, सो यू विल गेट द हाई टेम्परेचर हाई लेवल। सो दैट्स व्हाई ऑलवेज तुलसी इज ब्यूटिफुल एंड देन पीपल इज ब्यूटिफुल। सो इट्स एज नो मैटर व्हाट एवर स्टोरी इज कनेक्टेड बट दैट इज अ वंडरफुल गिफ्ट फ्रॉम दिस यूनिवर्स फॉर द यूनिवर्स। सो मेडिटेटिंग अंडर द बनियन ट्री एंड ब्रिंगिंग द कुश ग्रास इन योर फ्लावर पॉट एंड प्लांटिंग द तुलसी कुश ग्रास इज वंडरफुल। That's why our saint and Rishi Munis, they add that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay. But if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalas also, that we put that if you see that in the kalas there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav, mango and peepal and aak and chaap, so tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda and therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world and there is expensive, in you might came from the Japan and Australia and some other country, Canada, nowadays the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are India. While you are in India, you can see and feel the that's tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. इसीलिए पीपल के रुख में ध्यान करने से, पीपल के रुख के नीचे बैठ के ध्यान करने से श्वास प्रश्वासन में आश्वासन तो यही है। और पीपल के क्या है, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का भी वास है। इसीलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका, उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिश से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी की कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant and that's also dharma, obviously, and definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science, and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people, Bhagwan ki
1: jai.
0: Now we'll have one bhajan and we'll go continuously. We finished many chapters today, and so which is important also. We'll not have time some other time to read in detail. That's a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
1: भगवान की जय श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की जय श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय
1: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर

0: Bombole, Sri Sri Dipnara, Bhagwane ki jai, Sri Sri Deva Purisha Mahadeva ki jai, Sri Sri Madhav Krishna Bhagwane ki jai, Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramhans Sri Swami Maheshwarananji Guru Deva ki jai.
1: Jai Bole Bhole Baba ki. So in Shiva Purana, whatever talks, the Sustani Purana also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in the sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you meant, the change your vision, visuality, to Shiv Puran hamare liye aur sare vedadi ved kya karta hai ki hamare liye jivan kaisa saral banana hai और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है. और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा, वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है. तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है. सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है. संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है. तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रवीड हो जाता है, मन बिगड़ जाता है. सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू. इट इज सेइंग दैट वी ऑलवेज सेलिब्रेट हनुमान जयंती, इजन इट. So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I'm in confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo moksha isyami ma sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 adhyay ke 66 shlok mein jo likha hai wo bhi kya hai ki sarva dharman matlab ki koi bhi cheez aapka जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म, ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा. इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली यू विल गो, यू विल क्रॉस द रिवर. इफ यू डाउट देन इट विल नॉट बी. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट इंक्रीज फेथ ऑल्सो. And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a Charvak Siddhanta, the Charvak theory. The Charvak theory says like, Yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, Yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Charvak theory is that said. But in spirituality, it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from the Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rudra Samhita, Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, aaj ke liye aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke Jalandhar ko kaisa Vishnu Bhagwan ne parast karne ke liye Brinda ko satitva haran karna pada. Aur satitva haran karne ke baad mein unka pati dharma nasht ho gaya. Pati dharma nasht hone ke wajah se kya hai ki Jalandhar danav mar gaya. Isliye patni bich ke jo dharma hota hai wo bahut shaktishali rehta hai. Aap kahin bhi raho jaisa bhi raho ki Shankhachud danav ke liye bhi kaun thi balwan, Tulasi ka vrat tha. To aise karke फिर शिवजी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है. शिव पुराण के अब इस समय में हमको सारा समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर इन दिस हॉल इन आवर ब्यूटिफुल आश्रम एंड ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, वेलकम। फॉर सम वन ऑफ यू इज गुड मॉर्निंग एंड फॉर सम वन इज गुड इवनिंग एंड सम वन हैव लंच। सो बेस्ट इज टू से हरि ओम, वेलकम। टुडे विल बी द मेडिटेशन

देवपुरी स महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

नारायण भगवान की जय। सो दिस इज डिवाइन भजन आवर होली गुरुजीस इनर हार्ट डिवाइन फ्लावर इज केम आउट एंड ही रॉट इन बुक एंड दिस भजन इज इंस्पायरिंग टू भक्तास ओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स मेक योर फ्यूचर इन प्रेजेंट।

नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।

0: भगवान
1: की जय।
0: देवेश्वर महादेव
1: की जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: की जय।
0: सत्य सनातन धर्म
1: की जय।

जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।

गोचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

0: विद्दू। And when is this thing, everything is have done, then how that
1: sve je prikazano.
0: Ta ta ta ga di di da da di nam tak ta.
1: Shiva koji kleše.
0: Da. Gde gde blag bi, kuda ga gri gri grag. Da do da di ka bai ta re ge ge i de. एक पैर के अंदर में कितना इतना लगा करके दो है निंद का और ये जो इतना जो सा था ना इसको तो है सहम सहशास्त्र
1: वो सहस्र चक्र।

0: Then it is said, what you will be do? He said, what you will do?
1: И он там каже, что чините?
0: Yeah, he was, he's alone, dances, eh?
1: Он плеше таму, сам.
0: And then what it is, how it is coming? Then he remained, जब श्री भगवान मनुष्य वो हो के कि कैसा कहाँ है तुम्हारा कि वो मेरा है तो इसमें ये ले बना दिया ना ना

0: भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are like this. तो इनको दोनों बहनों को एक तरफ लगाओ next time. क्यों माता है भाई ऐसा है कि आप या तो यहाँ से आके बैठा दो या वहाँ दो, आप दो बैठे हो तो पीछे वो लोग भलाई यूँ देखें फंसा यूँ करें हैं जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे मैं तो हमें ठीक है हमें थोड़े थाने करते उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है कितना है क्या है कैसा हुआ है तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे संग किसके साथ में रहना है जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी दैट इज कॉल्ड सत्संग Sat, Sat is the good things, bad things, everything. Sat Sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, say, do the aage you kare. Phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं उसका क्या नाम जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे फिर वो इधर करे फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all to this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kaha hai? Wo Sat kaha se aya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai. Janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So, child is going front and mother is behind. Taki, the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So, sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo is satya kahal jaga hai. तो सत्संग और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो सिट लाइक दैट सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग सो वेरी नाइस सत्संग तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ तो बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉट सन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो होम नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big, big, big. I have not seen everything. India itna lamba chada hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many, many, many, many languages hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka, kisko kehte hai, batao? Haan. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country is at, when I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah? So, I'm coming always with aeroplanes. Yes? And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So I said, what do I do? I didn't do anything now. But he's doing it for me. Yes, first I did it. But he said, I told them, but he didn't know. I have done, and what do you, what will do? And so my disciples, that everyone in the whole countries, whole world countries, up they are come and made. So in government, India, we say that Maheshwaranand is, he has called the Hindus, it has happened. So he should do that. और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो आप उसको बोला आपका लेकिन बोलो कैसा क्या आप करो ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहोगे वो तो आगे भी पीछे में But now the many people have our disciples here all. They come, they are not coming here for working here. They are coming for Mahaprabhuji ke, or Mahaprabhuji ke, Mahaprabhuji Devpuri ji ka. Wo jo hai, that is the first. And so Madhavananji, he went from his house. From his house he went out. It was only like this. And he brought Mahaprabhuji, Mahaprabhuji jo hai, he came to my village, to my mother. And here my was staying in my house. And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda wasn't theek nahi tha to dheere dheere chalte the. But he was no very great, standing very great. वो महाप्रभुजी के पास आए थे, तो वहाँ बिठा दिया कि बैठो और पढ़ाओ। तो बाबजी के वो नहीं थे इतना, छोटा से ही सेम बाबजी महाप्रभुजी। And वो आते थे, then घर पे आते थे, फिर वो आते, वो बैठते थे। तो माधवनंजी, अवर स्वामी माधवनंजी बाबजी ने निपला हमारे रूपावास रूपावास में रखा है रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगे हो गए यूं से भी जगह हैं हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री Is the Jaja wherever I am in the other countries, very many countries. So where are you going? To Rupavas. Yes, my name is Rupavas in the whole world. Athara Gamwala Rupa Boni Jane. Like in Umera Rupavas Gujarat, Bo Bagar Sabio, like in Habare, Rupavas. To vote take जब भी मैं जाता हूँ कि कहाँ से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास और वो चल रहा है अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना और होना ही चाहिए नहीं तो फिर क्या पता करें तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है मनुष्य मनुष्य ही है अब किसने वो नाम दिया उसका वो नाम दिया उसका वो नाम दिया है सभी का नाम दिया कि किसका नाम है कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस अब हम मनुष्य हैं तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं आप देख लेना हाँ ठीक है आप लोग मेघवाल हो गरग से हो जो भी हैं सभी हैं वो है ही है लेकिन है वो मेरा मनुष्य मेरे देश का तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं? प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं? ए प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो। हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है। और इनका मकान या इतना बड़ा है उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है। ओके लेकिन आप देखेंगे इनको, देखेंगे कितना इसके इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए। और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो। श्री दीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु।

0: अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति। डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स,
1: drahí sestry a bratia,
0: डियर ऑल योगा प्रैक्टिशनर्स,
1: drahí všetci jogoví cvičenci,
0: ऑल our different countries here,
1: účastníci zo všetkých krajín, ktorí ste tu,
0: thanks all to the organizers,
1: ďakujeme organizátorom.
0: We are here in beautiful place of our ashram Mahaprabhu Deep Satsang Ashram.
1: Vďaka ktorým sme tu v týchto nádherných priestoroch nášho Mahaprabhu Deep Ashramu.
0: What can be more than most beautiful place, the sky, the clouds, beautiful trees, peace,

0: श्रीदेव नारायण भगवान की जय। कौन सा किया सतगुरु हमें है काम सत्संग से जगत बके तो बकने दे। इफ द वर्ल्ड इज सेइंग व्हाटएवर दे वांट टू से बट आवर वर्क इज टू बी इन सत्संग। लेट द वर्ल्ड से व्हाटएवर दे वांट टू से।
1: Nechajte svet nehovoriť, čokoľvek chce povedať.
0: We are always going to have people around us who are

0: अयम लोक समस्त सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति सद्गुरुदेव भगवान की जय समथिंग यू वांट टू डू एनर्जेटिक बिफोर प्रेयर After prayer, we will all go upstairs, have darshan, and get prasad upstairs.
1: A po modlitve pôjdeme všetci hore a dostaneme prasad tam.
0: Narayan Bhagavan.

What time is it? Time. चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाद् निर्जायत दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योति महादेव जनार्दन दीपस्य देवतम देवम् ओम शलभपुरजी महादेव की जय देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय सुदीप नारायण भगवान की जय हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद पुरजी सदगुरुदेव भगवान की जय विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद पुरजी गुरुदेव की जय।

0: ओम शलपुरजी महादेव की जय। देवादि देवेश्वर महादेव की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुरजी सद्गुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुरजी गुरुदेव की जय। आज का नंद की जय। सब संत शुभ महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। सत्सनातन धर्म की जय। आप सब भक्तों की जय। हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
1: महामंडलेश्वर श्री स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय।

नरयाम भगवान की जय। श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। स्वामी महेश्वरानंद जी विश्व गुरुदेव की जय हो।

0: तरक्की जय।
1: श्री भगवान की जय। श्री स्वामी लालानंद जी गुरुदेव की जय।

0: Sridip Narayan Bhagavan ki jai, Shri Satta Gurudeva ki jai.
1: Alak Puri ji Mahadeva ki jai, Madhavanand ji Bhagavan ki jai, Satya Sanatan Dharma मात पिता गुरुदेव की ओम शांति शांति शांति।

0: भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय,
0: स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय,
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।